0: इसमें
1: दी बर्ड्स की फीड का वाली
0: या
2: दी ये भी ना देकर कस
1: इम्प्रेसिव नी पेरेंटी
2: शाहरुख
1: शाहरुख आ सर कनपड़ते ఈ పక్షుల తరపున థ్యాంక్స్ చెప్పు ఓకే
2: అలాగే దీదీ